Japji se ekonkar satyanam kartapur nirbho nirvera kalmut ajuni sevang guru prasad jap ad sach jugad sach hevi sach nanak ho sivi sach soche soch na hove je sochi lakbar jupe jup na hove je lai raha liftar Bukya bukna utari jevana puriya var sesyana palak hoy taikna chalenal kiv sachiara hoye kiv gure tutte pal hukamra jai charna nanak likya nal hukami ho vanakar hukamna ke ajai hukami ho vanji hukame le variai hukami utamnich hukame dukh sukh paye ek na hukami bakshish hukame sada babaye hukame andar sab ko bahar hukam na koi nanak ke hukame je buje ta hove keh na koi gave ko tan hove kise tan gave ko da chane nishan gave ko gun varya yachar gave ko vikya vikam vichar gave ko sashtare tanke gave ko jile firde गावे को जापे दी से दूर गावे को वे है हरा हादूर कथन कथिन आवे तोत कत कत कति कोति कोत कोत तेदा दे ले दे तत पाए जुगा जुगंतर काय काय हुकमे हुकम चलाए राव नानक वे से वे परवाव सच साहेब सच नाय वाक्या वाव अपार आखे मंगे ते दे दात करे दातार फिर के आगे रखिए जदी से दरबार मोके बोलन बोलिए जिस सुंदरे प्यार अमृत वेला सच नाओ बरियाई विचार कर्मी आवे कपरा नदरी मुख द्वार नानके वे जानिए सद आपे सच यार तापे न जाए की तन होए आपे आप निरंजन सोए जिनसे विया तिम पाया मान नानके गावे कुन निदान गावे सुन्य मरवा क्या बाव तुप पर हासु का ले जाए गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख वे रसमाय गुरीश्वर गु गौर बर्मा गुर कर पाकी माय जय हो जाना आका नाही कह न कत न जाय गुरे के दे बुझाय सवन जिया का एक दाता सोमे विसन न जाय तीर्थ न बजे तस पावा विन बने के नाय करी जेति सिर तू पाई वे का विंके में मिल ले मात फिच करण जमर महान जय कुर की इक सुनी गुरे के दे बुझाए सबना जिया का एक दाता सोमे वसन न जाए जय चुक चारे आर जा होर न सुनी होए नाव खंद विच चानिए नाव सले सब कोए चंगा नाव रकाए के जस किरे जगले जे तिस नर न आवे ता पर न पूछे के कीता अंदर कीता का दोषी दोष त्रे नानक ने गुन गुन करे गुन बंतिया गुंदे तेहा कोय न सुचे जे तिस गुन कोय करे सुनिय सिर पेर सुनात सुनिय तरत लकास सुनिय तीपलो पाताल सुनिय तो न सके काल नानक भगता सदा विगास सुनिए दू पाप का नास सुनिए ईश्वर वर्मा इंद सुनिए मोसलामंद सुनिए जो जुगा तनवेद सुनिए शत सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुनिए दू पाप का नास सुनिए सत संतो ज्ञान सुनिए असत का इश्नान सुनिए पर पावे मान सुनिए लगे सहेश ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिए दू पाप का नास सुनिए सरागना के गा सुनिए शिपि पतिशाओ सुनिए अंदर पावे राव सुनिए हाथों वे आसकाओ नानक भगता सदा विगास सुनिए दू पाप का नास माने की कत कहे न जाए जे को कहे कछे पछताए राकर काम न लिख नहार माने कव करम विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जने मन कोय मने सुर तो वे मंबुत मने सगवन राखी सुत मने मोचनता न काय मने जम के सत न जाय ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जने मन कोय मने माग तक न पाए मने पत्सियों पर गजाए
Mane magna chale pant, mane taram sati sanban. Esa nam narinjan hoi, jeko manjane mankoi. Mane pave moktuar, mane parvare sadar. Mane tare tare gurusik, mane nanakave navik. Esa nam narinjan hoi, jeko manjane mankoi. Panch parvan, panch pardan, panche pave terke man. Panche soeta rajan, panche kagurek tian. Jeko kahe kahe vichar, karte ke karne na isamar. Dol dharam kya kaput, santok dharam kya kisut. Jeko buche hove sachyar, talle upar ke tavar. Darti hor tare hor hor, tiste var kare kamjor. Ji jaram ka kenav, savana likya buri kalam. Eo leka leka jane koe, leka lekya keta hoi. Kete tan siario rup, kete ta jane kunkut. Kita pasao e kokovao, tiste hoe laktariao. Kurut kavan kaha vichar, barina java e kovar. Jotu e pave sae balikar, tu sada salama nirankar. Asanka japa asanka bao, asanka puja asank taptao, asank kurya muvet pat, asank jog murai udas, asank bhagagungyan vichar, asank sati asank datar, asank sur muvaksar, asank mulivla etar, kurat kavankaha vichar, barina java ekovar, jotu epave sai balikar, tu sada salaman nirankar. Asanka murra makor, asanka jor haram makor, asanka marka jaye jor, asanka lbhatya kamai, asanka papi pap